0: 1 PM.
1: This time check is brought to you by Jazz.
0: CFM 89, we're playing your song.
2: Trending today.
3: Universal Pictures and Imagine Entertainment are officially moving forward with a live-action sequel to the 2000 holiday blockbuster, The Grinch. The studio is actively developing the project with key creative forces from the original production, currently in talks to make a return. The upcoming film aims to bring back comedic icon Jim Carrey to reprise his role.
4: City FM 89.
5: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
2: सिटी एफएम 89।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: नॉन स्टॉप हिट्स।
8: No talk.
9: Just you and the music.
8: Back to back starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City
4: FM
1: 89.
5: Trending today.
6: Universal Pictures and Imagine Entertainment are officially moving forward with a live-action sequel to the 2000 holiday blockbuster The Grinch. The studio is actively developing the project with key creative forces from the original production, currently in talks to make a return. The upcoming film aims to bring back comedic icon Jim Carrey to reprise his role.
7: Hi, Irkan Naya. No Frost IoT Refrigerator, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
9: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
10: शराय तो जवाबित लागू है.
7: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
11: सिटी एफएम 89.
1: यू आर लिसनिंग टू
12: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक.
13: That was Mali with Shake It to the Max. Up next, I really loved Dua Lipa's wedding photos. Not gonna lie. Like, I always say this whenever I talk about Dua Lipa. So if you're a frequent listener of this show, my bad for the repetition. But I let go of a ton of celebrity after October 2023. I was just like, all right, they're all nonsense. But Dua Lipa, again, just stands on business, used her platform. One of my favorite pop stars. And she just got married. And it's been fun to see those pictures. She just looks so happy. And you know what? She's happy. I'm happy. Here she is with Dance the Night.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
3: kya aap jante hain ki umr badhne ke sath hum 24% tak muscle mass kho sakte hain isliye ensure jisme maujood 25 zaruri vitamins aur minerals rakhe aapki strength aur mobility ko up to the mark ensure clinically proven to improve muscle strength in 90 days
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
6: होल्ड ऑन, स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू।
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
10: Mornings evolve and so do we.
11: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
12: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
10: The freshest music, the hottest gossip.
11: And the energy Gen Z lives on.
10: It's bold, it's current. It's your new morning routine.
11: The Breakfast Show.
10: Only on City FM 89.
0: City FM 89.
13: Sound.
11: You're listening to
14: Full Disclosure with Sabah Banu Malik.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City
3: FM
1: 89.
4: Coming up next.
1: Non-stop hits.
2: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Trending today.
7: Universal Pictures and Imagine Entertainment are officially moving forward with a live-action sequel to the 2000 holiday blockbuster, The Grinch. The studio is actively developing the project with key creative forces from the original production, currently in talks to make a return. The upcoming film aims to bring back comedic icon Jim Carrey to reprise his role.
4: City FM 89.
2: We're playing your song.
8: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
9: Kya aap jante hain ki umar badhne ke sath hum 24% tak muscle mass kho sakte hain. Isliye Ensure jisme maujood 25 zaruri vitamins aur minerals rakhe aapki strength aur mobility ko up to the mark. Ensure clinically proven to improve muscle strength in 90 days.
10: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
11: शराय तो जवाबित लागू है.
8: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89. वी आर
2: प्लेइंग योर सॉन्ग.
12: नो टॉक, नो टॉक, नो टॉक, नो टॉक, नो टॉक, जस्ट यू एंड द म्यूजिक. बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi air flow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
4: jazz cash ke sath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka april aur may miss ho gaya to tension kaisi mauka abhi bhi baki hai अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना?
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
5: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655# करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
2: सिटी FM 89, वी're प्लेइंग योर सॉन्ग.
6: यूर लिसनिंग टू
7: नॉन स्टॉप हिट्स.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: IoT सीम्स डिफिकल्ट। 4 सेक्शंस, लिमिटेड टाइम, हाई प्रेशर।
7: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग।
6: नॉट विथ AEO पाकिस्तान।
7: एक्सपर्ट ट्रेनर्स, मॉक टेस्ट्स, स्पीकिंग प्रैक्टिस, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज।
6: लर्न स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क।
7: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
6: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: BFM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Universal Pictures and Imagine Entertainment are officially moving forward with a live-action sequel to the 2000 holiday blockbuster, The Grinch. The studio is actively developing the project with key creative forces from the original production, currently in talks to make a return. The upcoming film aims to bring back comedic icon Jim Carrey to reprise his role.
5: जैस कैश के साथ पाओ एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
7: वी आर
1: City FM 89.
7: You're listening to
8: Non-stop hits.
9: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
10: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: Attention. The standard commute has been decommissioned.
6: Introducing a system override for your ears.
5: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: Song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: City FM 89.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.
6: The songs you know,

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: City FM 89.
5: Jazz Cash के साथ पाओ 1 crore जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने Jazz Cash अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए Jazz Cash है ना.
6: शराइत तो जवाबित लागू है.
7: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.